0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: 98 5 11 65 0 46.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाए नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन सम

यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको, जानी का होला जानी का होला, उनै समलाई थाहा होला जानी का होला।

एउटा नछए उपाय सुना, कुरा राम्ररी मनमा गुना। एउटा छ उपाय सुना, कुरा राम्ररी मनमा गुना। कृष्ण भक्ति गरो भने आखिरीमा पर्दैन रुन। कृष्ण भक्ति गरौँ भने आखिरीमा पर्दैन रुन। नत्र